0: मेलायु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्त जरुरी सूचना जुओ बेला खेमरिदे गरम अबोतिरी जेउ बेला सुनो फुरी कता ओचुदुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षत ज सक्षम नारी वातावरण मिले ने लख्यता असर केने री उमुल र थंगने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले बनाई जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख जिनके कोठेल मेला की नाटे जन धनी में खेता छेती ताऊ जो हो खोकाई
1: गेचो छालियाला बल्ला मेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसो छल गिरी
0: बन जंगल सरल मेरा आज मेरी बानी एमेला एमे उसको थामे लाली उसको पर पत्र राले पार जगिर हटे
1: सलाई लाइटर सियाला मे सचांगे चीज राले जबांगजा रो यामा देने पोला गिने या इतो चीज रो रही दे बन जंगल याल गे बाबा या
0: पिकनिक बन भोज बाको मे सचांग सु छिन्नी मेले चौसो सही दे की खिनाई बन जंगल उसको थामने दे के बारी पर चुरो दिदी ओरे को नहीं कुबार
1: नान्थर नाम्लो लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर गिरिए
0: गेसो छामेला खोरेल चाउसी पोलिए हरिदे तरिन गाई गेजो मेकेलाइजु अब नजिरे बनाए गेम यलो गेजो मेके मालाए औलेम लायो के लाइजे
1: वन जंगल स जुडिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली झ्याक्रा रस चौसो छिनी ने चौसो सहिरे के खेले
0: वन जंगल मेला दिगे माइजे
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।